अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सुभ भावनावां पूरियां करनिया हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

जो गलत ले पाए, चौकड़ मुलाया बह चौके पाया, सिखा कं चढ़ाइया ओह मुआ चढ़ पया, ए गया महला पहला।

सीना तक पहुकती है। कामण मिटे आए ओहे बकरारन खाया, सबको आखे पाए ओए प्रणा सुटिए भी फिर पइए हो रे। नान तक न टूटई जे तक हो वह जो

प्रभु दयाल कृपा करे ता सहाय कर पुराए से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम मना होए परवान ता कसमे का महल पाए से कसमे पावे सो करे मन सो बल पाए से ता दरगे पैदा जाए से ता दरगे

0: कोबर तरना जाई धोती टिक्का तेज माली तान ले छा खाई अंतर पूजा पड़क ते बसंज तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छरी बगाइन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ हुन पियावे वही साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तो तिक खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर वे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत फिटे एहो न साडा फिटे तन फिटे फिट करे न मन झूठे चली पर है न कहो नानक सच थई है सच होवे ता सच पाइए पड़ी।

चाकरी जे चले कसमे पाए और मत सुनो तली को वजो पी तुना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोए।

छुट्टी ना।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय।

ओंकार। सतनाम करता पुरुख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितो ज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गुण जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन। कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पाग लीला रे उदय तब लो प्रमते फिरते बहुताय। आओ काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हु मिट है नहीं रे पछुताय। आओ तत् विचार यह मथुरा जगता।

देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आया हो मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया तख्त वह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनया सिखी कन्ने जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने एह चाल निराली गुरमुखी गुर दिखिया सुन मन पिन्ने वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पात साहो निहचल चौर छत तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदुआ उगवण हो तै आथवण हो चहु चक्की कियन लुआ

त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरनाई। अंदर सच्चा नेहु लाया प्रीत में अपना, तन मन हुए निहाल जा गुर दिखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया।

जैत सरे महला चौथा कर पहला चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरे ओ मेरा माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरा हियरा रतन नाम हर बसिया गोर हाथ धरे ओ मेरा माथा।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधले काओ गुर अंचल दीजा जान नानक चल है मिलन था हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी।

गए मसकत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटीना जिनी नाम ते हाया गए मसकत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करते वाह जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर भला तेरे कारण आनंद बधाई।

0: बिनवता। श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत दिवस रात दुधाई दया खिले सगल जग चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदू।

depan

ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ

0: जापन करत बा ज्ञान देव सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा तेरे कर आनंद वधाए तुत कर मान मत्ता तेरे अपना आप जा
1: सर्व कला भरपूर दिस जात कता

गावो सच्ची बाणी, आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, आवो सिख

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

बोल रहे हैं आप।

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਰ

0: ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ।
1: ਸਲੋਕ

واہِ گرو جی کی فتح۔ Thank you.

ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ।

मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी,

पूता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

तेरे काम।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की।

감사합니다.

शरण परे की राखह शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरिन को आज संगरिया। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर हमारे मारिया। आप हाथ दै मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनाया देव दैत जक्षन उपजाया। आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल नाद सांब। ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन न मानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो तो तपाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को शाड़ कह, गहियो तुहार

गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलों समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जनीशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप इतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो
अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राखे और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही

मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मिहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया।

गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जब लो नहीं पागली लारी उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनाया। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है। पावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग राखै, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है। सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह जिस पास बैठया सोहिया। सबना दावी साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहो जिस पास बैठया सोहिया।

जिसका तन मन धन सब तिसका।

जीव की एक ही पहमानी और जतन कर रहे बहुत तेरे तीन तीन

कहो नानक निःचल कर बांधियो, गुर कियो बंदनी।

ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Wow.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Thank you.

Mm-hmm.

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियन, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

रहाओ, तुमरी कृपा ते मोह मन छूटे, बिनस जाए परमाई। आनंद रूप रवियो सब मद्दी, जात कत पिखो जाई।

संकट सुख आनंद राज पाई, मुख ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अगाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अगाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है। भगत वछले अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरण आई। चौ गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका दिवलाई। रहाओ राख लिए तन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कोह नानक कृपा पई, प्रभ पए सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिया, करते का होय विचारो। तित कर गाव हो सोहला, सिवरे हो सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहला, हो बारी जित सोहला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिल कर पाव तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ, बेसोए चसया घड़िया पहरा। थिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के ते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप माले आन लो पवन जबरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद बेमल नान एक पद, गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसद चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यास।
कृपा जल देह नानक सारंग कौ होय जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बह भरिया, मिल साधु खंडल खंडा ही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा ही। कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही, कर दंडौत पुन वड्डा ही रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा ही। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है, जम काल सह है सिर डंडा ही। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा ही। अवनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा ही। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा ही। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा ही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की वेला, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला, औद घटे दिन सुरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार बेकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वै एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो, हर गुरते मन है बसेरा। निज घर महल पाव हो सुख सहजे, बोहर न होय गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूर। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूर। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर

सूरज किरण मिले, जल

0: संत जला मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवा, सदब सुख हर नाम बढ़ाई, और प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात नोए दाई दाया खेलै सगल जगत,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अनकुबार जा।

रे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखर बिखखा माया मोह परम पे भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए

ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ

सतगुरु प्रसाद। आसा महला चौथा, संत घर चौथा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ।

0: नानक रसगुधा रसगुधा।
1: श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां परकन गोपाल, गहने पौन पानी वे संतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती मार तन वर्तन सरजन जाल, नानक मुसे ज्ञान बिहूनी। हाय गया जमकाल महला पहला।
0: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा झट पाए। वेख लोक सैकर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल। आप जाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। निरभाओ निरंकार सच नाम, जाग का किया सकल जहान। सेवक से कर्म चढ़ाओ, पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी करब लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थल वरोले बहुत अनंत। लाटू मधानिया नगा, पंखी पौधे लै नशा। सूए चढ़ पवाइए जंत नानक, पौधे गणत अनंत। बंधन बंद पाए सोए, पै किरत नचे सब कोए। नच नच हसे चले से रोए, उड़ न जा ही सिद्ध ना होए। नचण कुदण मन का चाव, नानक जिन मन पाओ तेना मन पाओ। पौड़ी ना उतरन दिन का।

की पेड़ पे कुम्हार, घड़ भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार, नानक जिन करतै करण किया सो जाने करतार पौड़ी, बिन सतगुर।

0: ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
1: ਹਉਮੈ ਹਜਾਤ ਹੈ।

0: पटपट गड्डी लदी है पटपट भरी है साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पड़ी है जेते वर्ष वर्ष पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास ना निकले के एक गल हो रो मैं चकना चक महला पहला
1: लिख लिख पड़े आ ते ताकड़े आ बहुत तीर्थ पवे आ ते तो लवे आ

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंड कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े वो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जचनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ो बैपूर नानक बखाने बेनती खुदवाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच तां बन जानिए जे हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछा धोए सच तां प्रजाणिए जन सच धरे प्यार नाओ सुन मरे सिया तां पाए मुख द्वार सच तां प्रजाणिए जन जुक्त जाने जियो तरत काए साध कै विच दे करता वियो सच तां प्रजाणिए जन सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जातम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सत्सव न होए दारू पाप कड्डे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़े।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुजुद संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख दुवार, जति सदावे जुगत न जाने छठ बह करबार, सबको पूरा पे हुए कट न कोई अखे, पत परवाणा पिछे पाई है ता नानक तो ले जापे महला पहला।
1: वदी सब जग नानका।

हरे। एक मन पुरख निरंजन त्यागो,

ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ।

चाहक तात समत सरे, कवि काल ठकुर हरदास तने।

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट धारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृढ़ जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी।

0: अजय कंक जल टल सिख संगत सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरमोयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरमोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस्य किए सुरदेव तोह जस जय जय जम्पे असुर गए ते पाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरो के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो।
2: जग जितो सत गुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सद ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अभिनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उच्चरै तै हर प्रेम पदारथ पायो।
3: श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत युग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया ना जाई साधक सिद्ध सगर सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोई गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जग तारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चोह जुग गुर सेवा कर फल रही बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनन सतगुरु

सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाद शाह जिस पास बैठियां सो ही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतना

सोरठ महला

चोटी काल गही मन की

चोटी को

रथ संपत तन पूरन सब मही और सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को

नानक कहत मिलन की बरिया।

बस हो मन आए, दया करो बस।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद वह मेरी माई।